दुनिया ऐस दल बल नियत स्वर्ग मोक्ष संपत्ति उदाकर दिन महत्फल महानिसंस सहित महाबल संपन्न असम सम सर्वज्ञता।